0: KJS, 92.7 FM, and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: I've met many such determined souls in my physical deformity ya koi bhi physical problem hone ke bawajood hausla be intaha tha. जो रोज सुबह उठते थे और हौसले और ताकत के सर पर एक जंग लड़ते थे और सिर्फ लड़ते नहीं थे जीतते भी थे. इसी वजह से शायद हर सुबह उनके लिए एक नया इम्तिहान होता था. हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं.

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: जी जनाब, चाहे घड़ी की सुइयां भागती जा रही हैं और मेरे जाने का टाइम नजदीक आता जा रहा है, पर एक बात कहूँ, तुम मुझे अलविदा ना कहना, क्योंकि तुमसे नाता है यूं वफाओं का, जैसे खुशबू से है हवाओं का, जैसे होंठों से दुआओं का, जैसे रिश्ता हो धूप छाँव का। अजीब सा सुकून है, पाकीजगी है इस रिश्ते में, इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम मुझे अलविदा ना कहना।

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: ये जिंदगी भी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पे एक नया सवाल देती है। ढूंढते रहते हैं हम जवाब जिंदगी भर, और जवाब जब मिल जाए तो सवाल बदल देती है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: सिम्टम्स को देखकर जैसे पता लग जाता है ना कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल वैसा ही है मोहब्बत के साथ भी। वही तकरार लफ्जों की, वही गुमनाम सी कसक, वही हर बात पर रंजिश, वही हर बात पर लड़ना, वही लिखना हमारे नाम को बेरहम मौजों पर, हमें पर्दे से छुपकर देखना और मुस्कुरा देना, वही मुस्कान धीमी सी, वही कुछ बोलती आंखें, वही साये से घबराना, सभी आसार कहते हैं कि हाँ उसे मुझसे मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत।

त्रै गुण है तकार, चारे वेद कथै आकार। तीन अवस्था कह वखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई। बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कह हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निरास बुझाया। दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रहै सुखाली। बाजी यो संसारो, लब लोभ मुच कूड़ कमावै, बहुत उठावै पहरो। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े। बहु नया व्यवारी रहाओ, हाँ तुझे आखा मेरी काया। तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करै पराई, झूठी लाए तबारी।

जपस निरंजन रच समाना काहे बोले जोगी कपट का ना रहाओ। काया कमली हंस अयाणा मेरी मेरी करत विहानी ता प्रणवत नानक नांगी दाजै फिर पाछै पछताणी ता। गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एकै जे कर दृढ़ चित की जै रे जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जै रे। मन एको साहिब भाई रे तेरे तीन गुणा संसार समावै लखना लखना जाई रे रहाओ। सक्कर खंड माया तन मीठी हम तो पंडो चाई रे रात अनेरी सूज सनाही लज टूक समूसा पाई रे। मनमुख करे तेता दुख लागे गुरमुख मिले वडाई रे जोतन किया सोई होवा कीर्तना मेटिया जाई रे। सुबर परे ना होवे ऊणे जोरा ते रंग लाई रे तिन की पंख होवे जे नानक तौ मूड़ा किश पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थामो हम आए अगन बिंब जल पीतर ने।

केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग पुली में आए, केते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदर पन्ना कर चोरी कर आवै, अगो देख पिछों देख तुझते कहां छुपावै। तट तीर्थाम नवखंड देखे हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी तोलन लागा कठी मैं मन जारा। जेता

असंता नाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध ज्ञानी कदे ना सीजै, इस युग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप तरह सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महला तीजा अंगवारे री। सच्चा अमर सच्चा पातशाह हो, मन साचे राते हर वे प्रवाह हो। सच्चे महल सच नाम समा हो, सुन मन मेरे सब

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निद पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सही समावे सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन खयांदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदन भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुर सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भोजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मंदासा, हमें मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै नहीं करवासा, नाम रते करमाहे उदासा, सतगुर सेवै तन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख बखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर

कर्म कांड बहु करै आचार, बिन नामै त्रिग त्रिग हंकार। बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास। महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाहीं। जैसे धरती मध्य पानी प्रगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही। बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ। स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने। जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही। नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही। गौड़ी बैरागण महला तीजा,